0: Hello?
1: Hey, hi. Did you find out?
0: I did. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये तुम क्यों करना चाह रहे हो? She's moved on. Big deal. I think you should as well.
1: Please. कब मिल रहे हैं?
0: आज रात, around 8.

0: Sheffield's Link FM.
1: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
2: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: 27. Nazir Solicitors is trading style of affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
1: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
2: Want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network Today Project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 01 14 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
3: Khush Ikhlaq Amla Lajwab Service AAMOT. अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की MOT नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की MOT एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की MOT का काबिले एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। AAMOT क्ले स्ट्रीट अटकलीव शेफील्ड S9 to VE। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 07867862585।
4: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
5: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
6: 96.7 Link FM.
7: You are listening to Link FM.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक रशीद।
1: मैं औरंगजेब चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद असगर है।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
7: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
8: मेरा नाम इमरान। लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: faith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: ये तो सब क्यों परेशान खलते हुए हो जी?
2: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन से एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
1: ये तो कोई फिक्र वाली गल है नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, ओए कार वे या वैन ते रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
2: ए ए एमओटी वाले हैं किधर?
3: ए ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ ते मौजा करो। फोन नंबर 07 8 6 7 8 6 2 5 8 5.
4: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
5: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
6: 96.7 Link FM.
7: You are listening to Link FM.

जलवे तेरे उस वक्त भी थे और कम भी नहीं थे, ये जब की हैं बातें के जब आदम भी नहीं थे, आसमानों की बातें बता रहा हूं, तवज्जो तलब क्या।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rohan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go.

सामीन, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है कवाली शो में, और मैं हूं फैसल याकूब सुल्तानी। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता है और इस रिकॉर्डेड प्रोग्राम में आपके लिए मुख्तलिफ कलाम पेश करते हैं हम। आपकी डायरेक्ट कॉल्स तो नहीं ले सकते, लेकिन आप फीडबैक के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 07939 8493339।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है आई टेक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग कॉन्टेक्ट नंबर 07955198814 एंड 07955198824
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं शादी मेहंदी मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा याद रखें शाहिद कैटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजुर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं हमारे यहाँ प्रोफेशनल कैटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें बेहतरीन मियार जायका और बाएतमाद सर्विस यही हमारी पहचान है राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद कैटरिंग सर्विस पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर शेफील्ड आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
1: जे होएगी एक्सीडेंट फिकर ना करो फटाफट द क्लेम टीम की फोन करो अगर तुम टैक्सी चलाने हो तुम प्राइवेट हार चलाने हो या फिर कोई क्राइन गड्डी ना एक्सीडेंट हो गया है तो द क्लेम टीम तुसनी खिदमत विच हाजिर है जेड़े शफील्ड दादरम ते गिरदोनवाले इलाके विच टैक्सी ते प्राइवेट हायर गड्डी तुसा की मुहैया करने द क्लेम टीम अपने वादे ने मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस भी देने ने उन्होंने फोन नंबर है 033-00-571-009 या विजिट करो 78 किंबरवर्थ रोड रोदरम
2: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Centre. Link FM.
3: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: Hi, my name is Harris Khan.
1: This is me, Humaira Tabassum.
2: My name is Gufran.
3: My name is Esra.
4: My name is Sarah.
5: This is Adil Mohammed, Sheffield Youth Cabinet Member.
4: Keep listening to Link FM 96.7 FM.
6: If you would like to promote your business on Link FM, our team can help you. Contact us on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.
7: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाओ तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बा एतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abedul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: लफ्ज दिल से निकले
1: और हर सुर
0: दिल को छो जाए,
2: वही है लिंक एफएम।
0: दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम शेफील्ड
4: 96.7 लिंक एफएम।

0: Community Radio for Sheffield.
1: This is Link FM.
2: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ
3: Link FM Sheffield.

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बा एतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन सारा शहर शनासाई का दावेदार तो है, लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है वक्त मिला तो सोचेंगे। और मौसम खुशबू बादे सबा, चांद शफक और तारों में, मौसम खुशबू बादे सबा, चांद शफक और तारों में, कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।
1: Link FM. The latest updates from your local community, Sheffield's very own community radio station, Sheffield's Link FM.

0: your number one for news in Sheffield. Link FM.
1: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM,
2: सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक FM, दिल से आपके साथ लिंक FM।

0: not happening.
1: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ,
2: Link FM Sheffield.

0: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया?
0: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
1: तो भुगतो।

0: अरे बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा को लाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन दो साल जैसा नहीं लग रहा, और बारिश भी आने वाली है।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेकअवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station,
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Saim Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.
18: Ball Entertainment presents...

This is Link FM 96.7 FM. And this is Drive Time Show. Last Drive Time. Last Drive Time of this week. कई सोच रहे होंगे कि शायद आज लास्ट है भाई, कभी तो वो टाइम आएगा कि हम बोलेंगे भाई। अफशान जी ने ज्वाइन किया, कह रहे हैं सलाम। मोहसिन भाई ने ज्वाइन किया है, कह रहे हैं सलाम। और सैयद कमर साहब ने भी ज्वाइन किया है और साथ में उन्होंने गुजारिश की है। सैयद कमर भाई, वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। कईयों की जो है 32वीं बार आ गई है जब हमने कहा कि लास्ट शो है आज। We are live on 96.7 FM, live on DAB, live online.

And keep sending your WhatsApp messages on 0793984939. I just want to share something with you. You know, this afternoon, maybe about 1:15, 1:30. डिलीट मैसेज करने वाले डिलीट कर दूंगा मैं आपको मैसेज डिलीट नहीं करना हाँ जी तो आज आफ्टरनून तकरीबन 1:15 के बाद से काम ख़त्म करके मैं घर जा रहा था तो मैं ड्राइव भी कर रहा था साथ में गाने सुन रहा था And I'll be very honest with you. ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है इसलिए लेकिन I want you to tell me और अभी मैं सोच ही रहा था तो अल्लाह खुश रखे हमारे बहुत अच्छे दोस्त भाई और रेगुलर लिसनर मोहसिन भाई हैं उन्होंने मुझे मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर मैसेज भी भेजा तो जब मैं निकला काम से अपने पहला ट्रैक लगा न्यू फास्ट पेस सेकेंड ट्रैक लगा गजल लग गई उसके बाद एक क्लासिक ट्रैक लगा फिर बाद में मैं नहीं सुन रहा था लेकिन मोहसिन भाई बता रहे थे कि बाद में अताउल्लाह खान भी लगा सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक दे इज ऑल रंग सब रंग जिसे हम कहते हैं ना इन अवर प्लेलिस्ट So sometimes during drive time show, agar main kehta hoon ki I'm not going to play very old tracks, that doesn't mean that I do not like. But main kehta hoon zara ye fast pace wala music hai na. Aur agar main is 2 ghante ke duran zyada baatein bhi kar leta hoon, to uski reason ye hai ki we do play a lot of tracks, and I am getting a very positive feedback from left, right, center. That Link FM's playlist is very good. And Mohsin bhai keh rahe hain very busy. Very busy. Main kya kaun busy hai? Dasso mainu. Theek hai Kamar bhai. Ye kaam bhi main karunga inshaallah. Koi masla nahi hai. अली हैदर भाई ने भी ज्वाइन किया है ड्राइव कर रहे हैं शायद या बहुत बिजी हैं खाली थम्स अप भेजा है चलें मेहरबानी आपकी आपने अपनी खैरियत की इत्तला हमें दे दी वरना हमारी खैरियत तो कोई पूछता नहीं है लेकिन हम पूछते हैं अकील शाह ने भी हमें ज्वाइन किया है

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं औरंगजेब चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद असगर है।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूँ।
7: मेरा नाम अंजुम अफ्ताब है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।
9: मोहसिन भाई, देखा आपने तारीफ की, क्या नाम है गाने की, तो प्यार करने वाले डर गए यार। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। गाना तो आपने सही कहा कि हो गया, अब मैं पता नहीं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं या ना करूं। आजकल के प्यार को असल में यही कुछ हो रहा है, इसी वजह से इस प्यार का ये अंजाम हुआ। Anyway, जी, if you just tune in, welcome to Drive Time Show on Link FM 96.7 FM on DAB and online.

जी कमर भाई, आपकी गुजारिश अटक रही है, तो दोबारा उसे कुछ करते हैं। तब तक आप ये सुने, आदमी जो कहता है

और आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि यस्टरडे के जो आपके मैसेजेस थे वो मैं ना पढ़ सका। ख़ास तौर पर शायदा जी आपका मैसेज मैं ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल योर मैसेज बट ब्रीफली जो है मैं वो शेयर कर दूँगा। आप कहती हैं कि आप हमारा प्रोग्राम मैनी ईयर से सुन रही हैं। एंड आई वॉज ऑलवेज वेरी इम्प्रेस विद योर प्रेजेंटेशन। Thank you, an amazing performance. Not sure about. When I was a presenter in BBC Radio Sheffield with Iffat Hamid and other team members, आप उस वक्त से हमें सुन रही हैं. Thank you very much. And you are also saying that you are a big fan of my show. I appreciate it. Thank you for your message. इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि यार मैं भी काफी ओल्ड हो गया हूँ। आप जिस जमाने की बात कर रही हैं, उस वक्त मेरी बड़ी बड़ी लंबी लंबी जुल्फें हुआ करती थी और मैं क्लीन शेव हुआ करता था। ये और बात है कि मेरी आवाज में उस वक्त भी, खास तौर पर जब मैं पोएट्री करता था मोहम्मद महमूद भाई के साथ, ओए होए होए, संडे नाइट को शो होता था मेरा और महमूद भाई का, और ऐसे छक्के और चौके मारा करते थे हम उस पोएट्री के शो में, क्योंकि कुछ अशार मैं पढ़ता था, फिर वो मुझे उन अशार का जवाब देते थे। तो अल्लाह खुश रखे मोहम्मद महमूद भाई को, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत अच्छा टाइम था वो। मोहसिन भाई, ये वाली बात मैं कह नहीं सकता और इसका जवाब है मेरे पास। वो बड़ी लकी हैं, वरना तुसी मंगो तो तुहानू कोई दे भी नहीं। ते मेरा भी यही हाल है। जी महमूद भाई इधर ही हैं। अली हैदर भाई ने हमें मैसेज किया, महमूद भाई इधर ही हैं। कभी कभार हमारी उनसे बात हो जाती है टेक्स्ट पे। मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि वो हमें यहाँ पर भी ज्वाइन करें, लेकिन अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो लिंक एफएम पर हमारा साथ नहीं दे पा रहे। बट इफ ही ज्वाइंस लिंक एफएम, देन आई हैव नो इशू ज्वाइनिंग हिम इन हिज शो, एंड मे बी वी कैन डू अ पोएट्री शो। हाय हाय हाय हाय, मैं क्या सुनेगा कौन। बिल्कुल, बहुत अच्छे प्रेजेंटर भी हैं अली हैदर भाई, एंड ही इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। अगले ट्रैक की तरफ चलते हैं। ये गुजारिश की हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। अब इस ट्रैक से गुजारिश है कि लग जा मोहसिन भाई, मैं भी मजाक ही कर रहा हूं यार।

Assalamu alaikum. If you just tune in, this is Drive Time Show. Kaleem, welcome to Drive Time. Aapne bhi hume join kiya, keh rahe hain assalamu alaikum, assalam. And we have some missed calls. मैंने तो नहीं कहा कि आप कॉल्स करें हमें. और मिस कॉल्स हैं भाई, मिस कॉल्स. भाई जिसको कॉल करनी है आप उसको कॉल करें, हमारे यहां पे क्यों कॉलें मार रहे हैं? और अगर आप हमें कॉलें मार रहे हैं तो आप हमें 01142618181 पे करें एंड यू कैन टॉक टू अस ऑफ द एयर. But when I am talking to everyone, why do you need to speak to me? And if you want me to play one of your favorite track, then you can WhatsApp 0793984 9339.

उम्मीद करते हैं कि अभी तक आप हमारे साथ हैं। इदरीस, थैंक यू फॉर योर मैसेज। महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम महमूद साहब, आप कैसे हैं? Right after the drive time. Raja Mohammed Saklan Saab and Master Razak Ajmal Saab will be presenting Haqaiq. और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, और किसी मौजू पे बात करें या ना करें, लेकिन केपीके में गवर्नर राज और इमरजेंसी के ऊपर ज़रूर बात होगी। अब ये देखते हैं कि क्या बात होगी, या ये बात होगी कि जी बिल्कुल ठीक ही है, या ये बात होगी कि बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब इसमें दो राय हो सकती हैं, या तो बिल्कुल ठीक हुआ है या बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, दरमियानी राय कोई नहीं हो सकती। तो ये जानने के लिए कि राय क्या है, तज्जिया क्या है, You have to tune in after 6 o'clock. Mehmood Saab, thank you for your message. आप कह रहे They'd be very happy. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखे ना, वो अपना तज्जिया आपको बताएंगे, अपनी असेसमेंट। लेकिन मेरी असेसमेंट सिर्फ ये है कि या तो ये बिल्कुल ठीक हुआ है या ये बिल्कुल गलत हुआ है। बस दरमियाना ये नहीं हो सकता कि अगर थोड़ा सा ठीक भी हुआ है, थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ, ऐसे नहीं हो सकता। ये मेरी ज़ाती राय है।

0: We have 13 listeners online. I'm very surprised. 13 people are listening online, but not a single WhatsApp message from the 13 people. Kyun? If you are listening online, I want you to message me and tell me that you are listening online. And if you are listening in Sheffield, I will really appreciate if you can message me and let me know. Our system to main bata deta hai kitne sun rahe hain. Lekin agar aap bhi bata dein ki aap sun rahe hain, to aapka kya jayega? Kuch jayega aapka? Shahida ji ne hame join kiya aur unke message aate hi mera kuch khane ko dil jaane lag gaya. Isse pehle ki mujhse pucha jaye ki mera menu aaj kya hai, ek local hamara takeaway hai. वो बहुत अच्छी दाल बनाते हैं, तड़का दाल. I had तड़का दाल चने वाली with तंदूरी रोटी. आय हाय हाय, तड़का दाल को कोई बीट नहीं कर सकता. और दाल का प्रॉब्लम एक और भी है भाई, हर कोई दाल पका नहीं सकता. तड़का दाल को कोई बीट नहीं कर सकता और हर कोई दाल बना नहीं सकता. सही बात है ना, खास तौर पर चने की दाल. आबिद भाई का भी मैसेज आया था कह रहे हैं कि मोहसिन भाई को प्यार हो गया है. अगले दो अल्फाज में नहीं पढ़ रहा आबिद भाई, मैं क्या जरा अन्नी पाऊ. मतलब उन्हें अपने काम से प्यार हो गया यार. हर बात में टेंशन क्यों ले रही हो यार. दाल दाल होती है, सही बात है, सही बात है. तो चने की दाल तड़के वाली, तड़का दाल चने की, और साथ में हों दो रोटियां. हाय हाय हाय, दुनिया में और क्या चाहिए यार. मेरी तो हमेशा से ख्वाहिशात भी छोटी छोटी रही हैं, मैंने बड़ी बड़ी ख्वाहिशों की ही नहीं है. अल्लाह का करम है भाई, अल्लाह का करम है. अपने हिसाब में रहना चाहिए बंदे को. शायदा जी आप भी बता देंगे आज खुद कुछ पका हुआ है या आंटी जी कुछ भेज रही हैं, और अगर भेज रही हैं तो क्या भेज रही हैं, सानू ही दसो. आबिद भाई अपने बारे भी दस दियो, मैं गया हो सकना अद्धी कढ़ाई खत्म करके आई हो. दाल कढ़ाई नहीं, मीट कढ़ाई.
1: छो जाए
2: वही है लिंक एफएम.
1: दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड.
0: आज लज़ानिया है जी, लज़ानिया. इधर बात हो रही है चने की दाल की, उधर से लज़ानिया ले आए हो. क्या कॉम्बो है भाई.

जी जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, टाइम रह गया बड़ा ही थोड़ा, 6 o'clock हकाइक, सो मेनी टॉपिक्स टू डिस्कस, लेकिन वन मेन टॉपिक विल बी emergency and Governor Raj in KPK. अब देखते हैं जी हकायक की टीम का इस पे क्या तबसरा आएगा. अच्छा तबसरा होगा मुझे यकीन है, आप सुनेंगे. आप भी अपना तबसरा हमसे शेयर कर सकते हैं via WhatsApp. You can send me messages now and the Hakaik team will read your messages during Hakaik. और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जो भी गुफ्तगू होती है वो प्रेजेंटर्स की ज़ाती राय होती है या उनकी अपनी असेसमेंट होती है, उसका लिंक FM से या पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर से कोई ताल्लुक नहीं. और सिर्फ गवर्नर राज नहीं लगा बल्कि गवर्नर राज के साथ साथ इमरजेंसी भी लग गई है. यानी इतनी टेंशन पे ही है, यानी इतने हालात खराब हैं, इतने सख्त हालात खराब, इमरजेंसी भी लगी है, गवर्नर राज भी लगा है. 5-6 महीने से कश्मीर के हालात भी खराब हैं. चलो वहाँ तो हम कह सकते हैं, मतलब क्या कहा जा सकता है, गवर्नर राज नहीं लग सकता क्योंकि जी कश्मीर जो है वो आज़ाद कश्मीर है. बट क्या वो आज़ाद कश्मीर है? वहाँ पर भी आपने सबको आवाम को छोड़ दिया है, सड़कों पर हैं लोग. और KPK में जो है इमरजेंसी और गवर्नर राज और उसकी रीज़न क्या बताई जा रही है, दहशतगर्दी की वारदातें बहुत ज्यादा हो रही हैं. और अचानक जैसे गवर्नर राज इमरजेंसी लगा, दहशतगर्दी की वारदात रुक गई. यार आपने नोट किया तो यार सबसे ज्यादा अटैक्स जो हैं वो तो बलूचिस्तान में हो रहे हैं. आप नहीं समझते कि वहां पे भी इमरजेंसी लगनी चाहिए? हम तो चाहते हैं पूरे मुल्क में पीस हो. यू कैन शेयर योर व्यूज, your feelings on WhatsApp 0793984939 and Raja Mohammad Saklan Saab will be reading your messages if you send any. Let's play another track. This track is for brother Mohsin, one of his

पता ही है कि केपीके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एमरजेंसी और गवर्नर राज नाफज कर दिया गया है और इस पर काफ़ी मीडिया के अंदर भी और ज़ाहिर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी काफ़ी शोर कर रही है, उनका हक है शोर करना, और कोई भी एमरजेंसी और गवर्नर राज के हक में नहीं है क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोग, लेकिन हालात इस नहज पर पहुँच चुके थे हकूमत के मुताबिक कि वो कह रही है कि गवर्नर राज एमरजेंसी और गवर्नर राज का नफाज ना गुजीर हो चुका था, और स्पीकर सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी और गवर्नर राज के नफाज के सदारती फरमान पेश कर दिए गए, और दानो फरमान वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अबूर तारक फजल चौधरी ने पेश किए। खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी के नफाज की तहरीक के हक में 214 जबकि मुखालफत में 56 यानी कि 56 वोट आए। ये आज जो लेटेस्ट खबर है वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे जैसे कि प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। और ये एक ऐसा वाक़या हुआ है, ज़ाहिर है कि पहले भी पाकिस्तान के अंदर इस एमरजेंसी और गवर्नर राज का नफाज हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पिछले प्रोग्राम के अंदर मैं और मास्टर साहिब और अल्ताफ़ साहिब भी हमारे साथ शामिल थे, यहाँ पर अल्ताफ अहमद साहिब जो हमारे कारी के लिंक एफएम पर, हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। असल में ये था कि हम सारे ये समझ रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि हकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो कामयाब होंगे, और ख़बरें देर तक यानी कि रात तक ये आती रही, देर तक आधी रात पाकिस्तान के अंदर भी उनकी मीटिंग्स और इजलास जारी वसारी रहा, ये आती रही कि मुज़ाकरात बिल्कुल करीब है और मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, लॉन्ग मार्च कैंसिल हो जाएगा और एमरजेंसी और जो गवर्नर राज की खबरें उस वक्त गर्दिश कर रही थी ये नहीं, इस पर अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। और इस पर हम तफसील के साथ बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ थोड़ी देर के बाद सबसे पहली खबर जो डार्नल के अंदर शफील के अंदर जो ये वाक़या हुआ है इस पर हम बात करेंगे शफकत मिर्ज़ा साहिब के साथ जब वो पहुंचेंगे, अभी वो पहुंचे नहीं हैं, और फिर उसके बाद हम बाकी जो खबरें हैं वो प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। मिडल ईस्ट के अंदर भी हालात तसल्ली बख्श नहीं हैं, ईरान और अमेरिका के दरमियान भी हालात तसल्ली बख्श नहीं हैं, अबनाए हर्म्स में भी हालात मखदूश हैं और तसल्ली बख्श नहीं हैं, फ्यूल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी हालात कशीदा हैं, तसल्ली बख्श नहीं हैं, और ये उस सऊदी अरेबिया और क्या नाम है हूसी यमन के अंदर जो एक तंजीम है वो उसने भी रियाज के हवाई अड्डे पर हमला किया, और ये 10 अक्टूबर का वाक़या है, हमला किया और खालिद अक्टूबर को रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले में कम से कम 13 अफराद खबर के मुताबिक और हलाक हुए और 300 से ज़ायद खबर के मुताबिक ज़ख्मी हुए, इसके बाद परवाज़ें शदीद मुतासर हुई। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, इस पर भी बात करेंगे, और बाकी भी कुछ खबरें हैं आज़ाद कश्मीर की भी हम वो जो लेटेस्ट खबर है वो सामने रखेंगे। आज़ाद कश्मीर से ताज़ा इतलात के मुताबिक पुंछ डिवीज़न में जारी कशीदगी कम करने के लिए सियासी राबते जारी हैं, इस पर भी बात करेंगे, और इस पर भी बात करेंगे कि ईरान और अमेरिका, इस पर मैं जिक्र कर चुका हूँ तफसील के साथ बात करेंगे, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। ताज़ा इतलात के मुताबिक अबनाए हर्म्स में तजारती जहाज़ों पर हमलों के वाक़ा

0: جی سامعین ناظرین، السلام علیکم. پروگرام حقائق ابھی ابھی اگر شامل ہو رہے ہیں تو لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم. ہمارے ساتھ عاطف افتخار صاحب جنجوا صاحب ہیں فیس بک پر، اور نظر خان صاحب السلام عرض کر رہے ہیں، وعلیکم السلام. اور سامعین ناظرین، واٹس ایپ کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام کے اندر کوئی میسیج اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں 0793984939. بریک پر جانے سے پہلے یہی ڈالر کے اندر جو یہ پروٹیسٹ ہوا امیگریشن مخالف گروپ کا، اس پر بات چیت ہم کر رہے ہیں، اور پروگرام میں شامل ہیں شفقت مرزا صاحب جو ایک میڈیا شفیل نہیں بلکہ برطانیہ کہہ لیجئے گا. شفقت مرزا صاحب کا کردار بڑا اہم ہے، اور ایک طویل عرصے سے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے ان کا تعلق چلا آ رہا ہے، اور ہم چلتے ہیں شفقت مرزا صاحب کے پاس دوبارہ اور ان سے پھر بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. جہاں سے انہوں نے بات ختم کی تھی وہاں سے شروع کیجئے گا شفقت مرزا صاحب. جی
1: جی بالکل. تو میں بتا رہا تھا کہ وہاں ایک کوچ کمپنی ہے جہاں وہ جس کا کانٹریکٹ ہے حکومت کے ساتھ کیٹلے روڈ پر، کہ وہ اسائلم سیکرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں اپنی کوچز کے ذریعے. تو یہ جو پیٹریٹ پلیٹ فارم ہے، یہ اس کے خلاف، ان کوچز کے خلاف یہ احتجاج کر رہے تھے کہ آپ یہ سلسلہ بند کریں. تو وہاں انہوں نے احتجاج کیا، اور اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی غالباً صبح 5:30-6 بجے کا وقت تھا. وہاں جمع رہنے کے بعد پھر یہ اسٹانیفتھ روڈ پہ انہوں نے مارچ کیا. اور یہ جو چیز ہے نا، یہ ہماری کمیونٹی اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ سب نقاب پوش تھے، کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہوڈیز لگائے ہوئے ہیں، تو منظر ایسا پیش کر رہے تھے جس کی وجہ سے کمیونٹی میں خوف و ہراس کا پھیل جانا ایک قدرتی امر تھی. ہر کوئی اسے دیکھ کر نا وہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے ایسی سچویشن. تو یہ سب جب ہوا تو اس کے بعد کمیونٹی کے جو متحرک افراد ہیں، رہنما ہیں، خواہ وہ مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، انہوں نے اپنی کوشش کرتے ہوئے مختلف میٹنگز کا اہتمام کیا. سب سے پہلی جو میٹنگ ہوئی وہ جامعہ مسجد تبلیغ الاسلام باڈمنٹ اسٹریٹ میں ہوئی. وہاں جتنی بھی مساجد تھی لوکل ڈارنل کے ایریا میں، ان سب کے علماء کرام اور مساجد کمیٹی اراکین کو بلایا گیا. پولیس کی سینئر کمانڈ ٹیم وہاں موجود تھی، اور اس واقعے کا ذکر ہوا، کمیونٹی کی تشویش سے ان کو آگاہ کیا گیا، اور اپنے جو کمیونٹی میں پائے جانے والے عدم تحفظ ہے اس کو اجاگر کیا گیا. تو یہ بات ہوا. اس کے بعد پھر ایک کے دو دن بعد اتوار کے روز یہاں پاکستان مسلم سینٹر میں میٹنگ تھی. پاکستان مسلم سینٹر میں جو میٹنگ تھی وہ ایک عام میٹنگ تھی جس کا اہتمام اسٹینڈ اپ اگینسٹ ریسزم نے کیا تھا پاکستان مسلم سینٹر کے تعاون سے. اور یہاں پر میٹنگ ہوئی، بہت لوگوں نے، تقریباً 200-300 افراد تھے جنہوں نے شرکت کی. اکثریت ہے جو واضح اکثریت، نمایاں اکثریت ہے جو وہ اپنی پاکستانی کمیونٹی اور بالخصوص نوجوانوں کی تھی. یہ میٹنگ بہت سے لوگ کہتے ہیں، اور بظاہر ایسا ہی ہوا کہ کوئی اس طریقے سے کہیں کہ کوئی منظم تھی، آرگنائز تھی، ویری ڈس آرگنائزڈ ہو گئی، کیونکہ اور لوگوں کو نا ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ اسی کی بات کو سنی جائے، اسی کی رائے کو سنا جائے.
0: یعنی کہ جو پاکستان مسلم سینٹر کے اندر میٹنگ تھی وہ ڈس آرگنائز تھی.
1: بالکل، میں یہی تھا وہاں، وہ اس وقت یہی تھا. تو ہر کوئی اپنی بات سنانا چاہ رہا تھا، حتیٰ کہ جب پولیس کو موقع دیا گیا کہ وہ اسٹیج پر آ کر اپنا موقف ہے جو وہ بیان کریں، اور اپنی جو ان کی معلومات ہیں ان کو کمیونٹی کے سامنے پیش کریں، تو اس وقت بھی نا بہت سے نوجوان تھے وہ جوش میں آ کر ان کو بات کرنے کا موقع ایسا نہیں دے رہے تھے
0: پولیس والوں کو.
1: سوال جواب کا سلسلہ ہوا تو وہیں بھی یہی تھا. اور ایک بڑی چیز جو ہوتی ہے، جو اکثر لوگ جن کو تجربہ نہیں ہونا ہوتا نا کہ میٹنگ میں کس طریقے سے وہ، کیونکہ میٹنگ میں جانا ہر کسی کے پاس کا روگ نہیں ہوتا، تو وہ تجربہ نہیں ہوتا، تو اکثر لوگ سوالوں کے دوران بھی نا وہ ایک طرح سے تقریر کرنا شروع کر دیتے ہیں.
0: جی جی.
1: یعنی وہ تمہید باندھتے ہیں، تمہید باندھ کر اینڈ پر آ کر वो कहते हैं कि ये क्यों हुआ,
0: क्यों?
1: हालांकि वही चीज़ है ना, बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं। तो बहुत से लोग बड़े मायूस हुए कि वो मीटिंग है जो वो उस तरीके से नहीं हो पाई, अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, वेरी डिसऑर्गेनाइज थी, ये थी। मैं उसे बिल्कुल, मैं उसके उस मीटिंग को एक दूसरे पहलू से देखता हूँ।
0: जी जी,
1: देखें कि जो कुछ यहाँ हुआ, 200-300 बंदे जब आपकी सड़क से सुबह निहार मुँह, जब वो आप देखें, आपने कार्टून खोलें तो वहाँ देखेंगे 200-300 बंदे नकाब पोश काले कपड़े पहने हुए वहाँ से गुजर रहे हैं,
0: किसी भी एरिया के अंदर,
1: बिल्कुल किसी भी रेजिडेंशियल एरिया से गुजर रहे हैं, तो वहाँ कम्युनिटी में खौफ व हरास का फैलाया जाना एक फितरी अमल है,
0: कुदरती अमल और फितरी,
1: बिल्कुल। अगर देखें ना, हम भी मिसाल के तौर पर जो आबतौन चले जाएं, मैनर चले जाएं, वाबन चले जाएं, पार्सन क्रॉस चले जाएं, अगर इतने मुसलमान या अकलीती कम्युनिटी के अफराद वहाँ पर हों, कोई डैमेज ना कर रहे हों, कुछ भी ना कर रहे हों, तो वहाँ की जो कम्युनिटी है उनमें भी वो खौफ व हरास फैलेगा कि ये क्या हो रहा है भाई, क्यों यहाँ आए, क्या करेंगे, पता नहीं। सो कम्युनिटी में ये गम गुस्सा पाया जाता था, तशवीश पाई जाती थी, और इस मीटिंग में ये हुआ कि उस तशवीश को बड़े ही अच्छे तरीके से नौजवानों ने वो पेश, वो नौजवान हैं जो वो ये दिखा रहे थे कि उनकी माएँ क्या फील कर रही हैं, उनकी बहनें क्या फील कर रही हैं, उनके बच्चे क्या फील कर रहे हैं, उनके बुज़ुर्ग क्या फील कर रहे हैं, वो ये बता रहे थे। तो इसको इस नज़र से भी देखना चाहिए, इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि डिसऑर्गेनाइज था। देखें, जब आप गुस्से में हों, जब घरों में देखें, दो घरों के दरमियान या दो अफराद के दरमियान हम आएंगी ना हो, सोचों कि नाराज़गी का कुछ हो या झगड़ा बने, तो वो फिर ऊंची आवाज़ में भी बात की जाती है, शाउट करके बात की जाती है, और अपनी ही बात की ऊंची आवाज़ में बात की जाती है कि दूसरे की आवाज़ से ऊंचा ही रहे।
0: जी जी।
1: तो ये सब कुछ हुआ, और मैं इसे जिस पहलू से देखता हूँ कि यही चीज़ वो कम्युनिटी की फ्रस्ट्रेशन थी जो वहाँ नुमाया की जा रही थी। तो पुलिस के जो अफराद वहाँ मौजूद थे, इस फ्रस्ट्रेशन को वो यकीनन वापस लेकर गए होंगे और अपनी जो कमांड टीम है उनको बताया होगा कि ये कम्युनिटी में इस तरह के जज्बात पाए जाते हैं। और उसका मैंने आज देखा भी, आज जिस मीटिंग से आया हूँ तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी, हमने इस चीज़ को नोट किया है। यहाँ मैं ये कहूँ कि 2-3 सवाल वहाँ जो हुए बड़े ही अहम सवाल थे। एक ये था, एक किसी ने सवाल किया था कि ठीक है, हमने मान लिया जी कि वो यहाँ उस कोच कंपनी के जो गैरेज है, जो डेपो है, उसके बाहर वो एहतजाज करने आए थे, मान लिया। ये पुलिस ने, हालांकि होता तो ये है कि पुलिस से इजाज़त लीजिए, आप कोई भी जब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो पुलिस से इजाज़त लेनी पड़ती है, उनको दिखाना बताना पड़ता है, ये नहीं थी, ये खिलाफ़ कानून बात हुई। इस चीज़ को वहाँ पॉइंट आउट किया गया उस इतवार वाली मीटिंग में जो पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर में हुई, पुलिस के इल्म में लाया गया कि अगर वो उन्होंने यहाँ पर इजाज़त नहीं ली थी तो आपने उनको इजाज़त की होती। फिर अगला सवाल ये था कि अगर वो आ ही गए, उन्होंने वहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करना था, अपनी प्रेजेंस उन्होंने शो कर दी, वो कर लिया, मान लिया ये भी कम, तो फिर आपने उनको एक रेजिडेंशियल एरिया में आने की इजाज़त क्यों कर दी? ये भी बड़ा अहम सवाल है कि अगर आप, वो कह रहे, उनका मौक़िफ है कि हम कोच कंपनी के ख़िलाफ़ थे, हम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं थे या कुछ, तो फिर वो रेजिडेंशियल एरिया में क्या करने आए थे?
0: ठीक है,
1: एक तो ये सवाल बनता था। और फिर एक और सवाल था कि अगर फेस मास्क या इस तरह की चीज़ें, अगर कुछ, फिर एक नौजवान ने वहाँ ये भी बताया कि उसने कहा कि ये खुद मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ कि डार्नल के इलाका में ही एक नौजवान है, उसने वो बालाक्लावा या अपना फेस है ना जो वो कवर किया हुआ था।
0: जी जी।
1: तो दूसरी जानब कुछ अंग्रेज़ नौजवान ने जो वो जा रहे थे और उसी वाक़े को ज़िक्र करके वो कह रहे थे कि जी के हाँ ये कम्युनिटी है, इसने कुछ नहीं किया, और पुलिस वहाँ मौजूद थी, पुलिस ने वो जो एक नौजवान है जिसने बालाक्लावा पहना हुआ था उसको रोका, उसे कहा कि आप एक्टिंग सस्पिशियस एक्ट कर रहे हैं और हम आपकी तलाशी लेंगे। तो उस नौजवान ने कहा कि मैंने इंटरवीन की और कहा कि क्या कर रहा है ये, तो वहाँ कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं है कर रहा, लेकिन अगर आप करना ही चाहते हैं तो वो जो जा रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरी तरफ जो सड़क की दूसरी तरफ जो ग्रुप जा रहा है अंग्रेज़ों का,
0: जी जी,
1: वो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं उससे तो खदशा है कि अमन अमन ख़राब होने का, आप उनसे तो पूछ नहीं रहे और इसको कह रहे हैं। बहरहाल पुलिस ने उस नौजवान की तलाशी ली और उसको उस سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا, اور اس نوجوان نے کہا کہ میں نے پولیس سے کہا کہ میں اسے گھر چھوڑ کر آؤں گا, اب بے فکر رہیں, لیکن آپ اس معاملے کا کریں کہ یہ حالات بگڑ سکتے ہیں, جو دوسری جانب انگریز گروپ تھے. تو وہ انہوں نے تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک جانب آپ کے 200-300 بندے ہیں جو اپنے فیس کو کور کیے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ بھائی لیجسلیشن نہیں ہے کہ ہم ان کو روک سکیں یا منع کر سکیں یا ان کو گرفتار کر سکیں, اور دوسری جانب ایک اکیلا نوجوان ہے جو سڑک پر کھڑا ہے اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کمیونٹی بھی کھڑی ہے, آپ اس کی تلاشی لے رہے ہیں, تو یہ کیسا, یہ دورا معیار نہیں ہے پولیسنگ کا. تو پولیس والوں نے, یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا, یہ مختلف اس طرح کے پوائنٹ ہیں جو وہ بتائے گئے. اور آج جو میٹنگ ہوئی ہے وہاں پولیس نے اس کی برملا. ایک بات اور,
0: آج میٹنگ کی کس نے آرگنائز کی ہے؟
1: یہ جو زہیرہ ناز نے, جیسے میں پہلے بتایا تھا کہ زہیرہ ناز نے آرگنائز کی تھی, اور کمیونٹی کے بالکل نوجوانوں کے سرکردہ جو نوجوان ہیں, جس میں امام صاحب بھی موجود تھے, الخدا کے امام صاحب ہیں وہ بھی موجود تھے, کیونکہ یہاں بہت سے نوجوان جاتے ہیں, وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. مجھے بھی مدعو کیا گیا اور میں بھی وہاں گیا, اور وہاں بہت سے سوالات کیے گئے. ایک سوال جو دیکھیں, آج کل میڈیا, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور سوشل میڈیا پہ مس انفارمیشن ہے جو بہت ہوتی ہے,
0: بہت زیادہ.
1: ایک چیز یہ سامنے آ رہی تھی, لوگوں نے اس کا اظہار کیا کہ جو سٹریفورڈ شائر کی پولیس ہے اس نے اس گروپ کو یہاں پر ایسکورٹ کیا ہے. تو مقامی پولیس والے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. بہرحال آج انہوں نے میٹنگ میں کنفرم کیا ہے کہ ان کی تحقیقات کے مطابق یہ بالکل غلط ہے, ایسا قتل نہیں ہوا ہے کہ سٹریفورڈ شائر پولیس نے ان کو ایسکورٹ کیا ہو, یہ بالکل غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پولیس نے آج کنفرم کیا ہے کہ واقعہ ہی ان کو اس واقعے کی اطلاع نہیں تھی.
0: نہیں تھی,
1: ٹھیک ہے, قبل از وقت
0: سینئر آفیسر تھے پولیس کے, ظاہر ہے کہ سینئر ہوا میٹنگ کے اندر, ظاہر ہے کہ سینئر جو بالکل جی جی
1: نہیں, یہاں کمانڈر تھے,
0: کمانڈر
1: پولیس سپرنٹینڈنٹ تھے, تو ذمہ دار بندے, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بالکل نہیں تھی اطلاع اس کی,
0: ٹھیک ہے.
1: اور پھر یہ بھی سوال کیا گیا کہ اگر دوبارہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا اس کو آپ کس طریقے سے ہینڈل کریں گے, اس طرح کے سوالات کیے گئے. تو ایک جو تو یہ مس انفارمیشن کے حوالے سے ہے کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی چیز کو, کسی بھی انفارمیشن کو دیکھ کر تو آپ ذرا تحمل سے کا مظاہرہ کیا کریں. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس کے بارے میں سوچیں کہ یہ واقعی انفارمیشن ہے یا غلط انفارمیشن ہے, فالس انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے نا. تو غلط بیانی وہاں بہت ہوتی ہے, لوگ اپنی اپنی بات کو منوانے کے لیے نا طرح طرح کے وہ لگا.
0: اچھا, تین چار میٹنگز ممکن ہے کہ باقی بھی کچھ جگہوں پر میٹنگز ہوئی,
1: ایک اور میٹنگ ہو رہی ہے,
0: بالکل بالکل میٹنگز. باٹمی اسٹریٹ کا آپ نے ذکر کیا, مسجد باٹمی, تبلیغ باٹمی اسٹریٹ جو مسجد ہے وہاں جو پہلی میٹنگ ہوئی, پاکستان مسلم سینٹر کے اندر میٹنگ ہوئی, پھر ڈارن کے اندر ہوئے, اور آج ایک میٹنگ ہوئی زہرہ ناز نے اس کو آرگنائز کیا. مجموعی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میٹنگ جو آرگنائز کی جا رہی ہیں اور لوگ سوال کر رہے ہیں پولیس والوں سے, پولیس والے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس والے کیا پرامس کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے آج کے بعد, اور جو کمیونٹی کے خدشات ہیں وہ کس طریقے سے دور کریں گے؟
1: جی دیکھیں, یہی سوال اٹھائے گئے اور پولیس والوں نے اس کا جواب دیا. اسے کہا کہ یہاں ایک چیز میں اس سے قبل اگر میں بیان کر دوں کہ اس میٹنگ میں نا کمیونٹی کا مطالبہ تھا, یا کمیونٹی کے کچھ افراد کا مطالبہ تھا کہ پولیس سٹیج پر کھڑے ہو کر اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ انہوں نے معاملے کی پولیسنگ کرنے میں ان سے غفلت ہوئی, کوتاہی ہوئی ہے, اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے, جو پولیس وہاں نہیں کر رہی تھی. آج یہی بات میں نے اس میٹنگ میں جس سے میں آ رہا ہوں اس میں دہرائی, اور وہیں سپرنٹینڈنٹ وہاں موجود تھے, ان کے کمانڈر بھی وہاں موجود تھے. میں نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں کی, اور اس کا بہتر یہ ہوتا کہ واقع ہوا تو ہے, آپ اگر یہ کہہ دیتے کہ ممکن ہے ہم اس کی بہتر پولیسنگ کر سکتے تھے اگر ہمارے پاس اطلاع ہوتی. انٹینشنلی ہم نے ایسا نہیں کیا ہے, لیکن یہ ہو گیا ہے, اور اسے اگر آپ غفلت کہیں تو ہم آپ کے
0: ہم اسے بہتر کر سکتے تھے,
1: ہم یہ یقیناً غفلت یا کوتاہی نظر آ رہی ہے اور یہ ہے, لیکن اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہمیں بھی سرٹن پروٹوکول ہیں جو وہ فالو کرنے پڑتے ہیں. لیکن پولیس کے پاس ایک طریقہ کار ہوتا ہے, میں اگر ایک پولیس آفیسر ہوں تو میرے پاس اختیار ہیں جو محدود ہوتے ہیں, मैं जो बात करता हूँ महदूद ही कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो पुलिस वालों का भी यही है कि कमांड टीम है, कमांड टीम से जो हुक्म मिलता है उसके मुताबिक भी वो करते हैं, तो हमें भी ये बात समझनी चाहिए। बहरहाल पुलिस वालों को बताया, पुलिस वालों को आज की मीटिंग में जो बात हुई है कि आप कम्युनिटी में ये जो फिर मैंने वहाँ भी पुलिस को भी कहा कि मीटिंग डिसऑर्गेनाइज थी, सब कुछ मान लिया, लेकिन मैंने कहा मैं बहुत खुश हुआ उस मीटिंग में जाकर, जो रवैया मैंने देखा कम्युनिटी का बहुत खुश था, और वो रवैया उस हकीकत को कि को नुमाया कर रहा था, अकासी कर रहा था जो हमारे घरों में मौजूद पाया जाता है, खौफ व हरास को वो नुमाया कर रहा था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट यहाँ आए थे या बाकी जो अफराद थे पुलिस के, उन्होंने इसको वापस जाकर फीडबैक किया होगा अपनी कमांड टीम के साथ कि ये कम्युनिटी इस तरह खौफ व हरास में मुबतला है, गम और गुस्से में मुबतला है, और इस चीज़ का हमें अजाला करना चाहिए और इसके लिए हमें हिकमत अमली अपनानी चाहिए। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि बिल्कुल हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, रेकग्नाइज़ करते हैं कि ये चीज़ ऐसा, और इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करते हैं कि अगर इस तरह लोग आ जाएँ इलाके में जिसकी कबल अज़ वक्त कोई इतला ना हो, तो फिर वाकया ही कोई भी कम्युनिटी हो, किसी रंग नस्ल मज़हब मुल्क से ताल्लुक रखती हो, मकामी हो, उनमें वो खौफ व आरास का पाया जाना एक फितरी अमल होता है, ये पुलिस वालों ने एक्सेप्ट किया।
0: अच्छा, दूसरी जानिब नस्ल परस्ती के खिलाफ सरगर्म तंजीमों ने भी इस वाकया के बाद इजलास मुनाकिद किया, जबकि 24 अक्टूबर को शफील में इतिहाद और नस्ल परस्ती के खिलाफ मार्च मुनाकिद करने की तैयारियों की भी इतला है, कंफर्म है नहीं ये आपको पता होगा, क्या हो रहा है, क्या होगा?
1: जी मुझे इस हवाले से तो पता नहीं है कि कौन सा ग्रुप क्या कर रहा है, ये मुझे पता है कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर में मीटिंग हुई थी, ये स्टैंड अप अगेंस्ट रेसिज्म जो काफ़ी मुतर्रक है, नस्ली मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ दीवार बनकर खड़ी होती है हर जगह पर, इन्होंने इसका अहतमाम किया था इतवार वाली मीटिंग का पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर के इश्तराक के साथ, ये मीटिंग काफ़ी कामयाब हुई, मुमकिन है बाद में भी मीटिंग हो और होनी चाहिए। देखें इसी तरीके से हम अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, और लेकिन कॉन्फ्रंटेशन ऑन द डे वो नहीं होनी चाहिए। कॉन्फ्रंटेशन ये जो नस्ल परस्त है उनके उनका यही सोच होती है कि अगर हम ये करेंगे, इनको उकसाएँगे, ये कानून को अपने हाथ में लेंगे, कानून को तोड़ेंगे, तो ये फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि हम तो जोश में आकर वो कर बैठेंगे, लेकिन जब गिरफ़्तार हो जाएंगे, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, तो वो एक अलग मसला बन जाता है। और ये जो नस्ल परस्त या फाशिस्ट किस्म की तंजीमें हैं, उनका मौक़िफ यही होता है, वो इसी मकसद के लिए करना चाहिए, और हमें उनको उनके मकसद में अपने आप को होश का दामन छोड़कर उनके मकसद में उनको कामयाब नहीं होने देना, ये हमारी सोच।
0: जी जी, नज़र ख़ान साहिब शफीर से इनका ताल्लुक है हमारे प्रोग्राम में, और बाकी भी जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें ये हिस्सा लेते हैं। एक बात उन्होंने लिखी है, मैं अपने सामिन नाज़रीन और आपके सामने पेश करता हूँ कि इतने सुबह सुबह मुज़ाहिरीन का इकट्ठा होना प्लान बहुत ही मजबूत था इनका, मगर गलतियाँ हमारी कम्यूनिटी की भी हैं, ख़ासकर नौजवान नस्ल पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, वालदेन को बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखनी चाहिए। इस पर क्या फरमाएगा आप?
1: जी बिल्कुल, इन्होंने बजा फरमाया, एक जानब से देखा जाए बजा फरमाया, लेकिन दूसरी तरफ ना हमारा मसला ये होता है कि हम एक मसले को लेकर उसे दूसरे किसी मसले के साथ जोड़ देते हैं। ये जो हुआ ये गलत हुआ, हमको इसी पर रखना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी इस वजह से हुआ उस वजह से हुआ। ये ग्रुप्स हैं जो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ हैं, नस्ल परस्तों के ख़िलाफ़ हैं, और सबसे बड़ा मुस्लिम मुखालफ ग्रुप्स हैं, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये ग्रुप हैं, और हर चीज़ को की ढाल बनाकर वो हमारे ख़िलाफ़ जो कुछ भी होता है वो करते हैं। मेरे ख्याल में इसमें हमें ये नहीं देखना चाहिए कि नहीं जी हमारे नौजवानों की गलतियाँ, हमारी कम्युनिटी की गलतियाँ, गलतियाँ हर जगह होती हैं, लेकिन उसको देखें ना, अगर टैक्सी ड्राइवर के साथ कोई जुल्म या ज़्यादती या उनके साथ कोई तशद्दुद हो रहा है या उनके साथ कहीं उनका पर पथराव किया जा रहा है या कुछ, तो अगर ये कहें कि ये हमारी कम्युनिटी की गलती है जी कि हमारे बच्चे ऐसा करते हैं वैसे करते हैं, आप नहीं जोड़ सकते इस तरीके से। जो गलत है वो गलत ही है, हमारी कम्युनिटी की भी गलतियाँ हैं, हमारे बच्चों की भी गलतियाँ हैं, नौजवानों की भी गलतियाँ हैं, सब चीज़ है, ये दुनिया है, और इस दुनिया में हमको ये सब कुछ देखना पड़ता है, रेन सेना पड़ता है, लेकिन ये नतीजा उखज कर लेना कि ये कुछ हुआ है, अगर हमारे बच्चे ठीक होते तो ये ना होता, मेरे ख्याल में ये गलत है ये चीज़।
0: जी जी, मास्टर साहब कुछ फरमाना चाहते हैं, इससे पहले मास्टर साहब कुछ कहें कि तकलीम मोहम्मद हमारे लिसनर्स हैं, प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले हैं, लिखते हैं कि इफ़ द पुलिस डिड नॉट नो अबाउट द मार्च बिफोर इट हैपेंड, द पब्लिक कॉल्ड देम, then the consequences according to the law are for the organizers under section 11 of the public order act 1986. It is the organizers who have a legal duty to give 6 clear days written notice to the police before a yani ki mukhtasar baat ye hai ki 6 din pehle ka notice dena chahiye, vagarna fine ho sakta hai up to £1,000 yani ki jo unhone likha hai apne message ke andar, pata nahi main wo sahi pad saka hu nahi saka hu. Baat ye hai ki kya police walon ne koi is tarah ki baat ki hai ki koi wo karwai karenge kyunki unhe notice nahi mila 6 din pehle ya is tarah ki koi baat?
1: मैं इसका इस पर बात करूंगा, लेकिन मास्टर साहब चूंकि कुछ कहना
0: जी, मास्टर साहब आप फरमाइएगा।
2: मैंने भी असल में मिर्जा साहब से ही बात करनी, इन पर इन्होंने बात करनी है। असल बात ये है, मिर्जा साहब के आगे बात कर रहे थे आप से आने से पहले कि बुज़ुर्ग यहाँ से 40-50 साल पहले जो है 1960s में आए
1: जी,
2: बड़ा अदब प्यार इन लोगों का था उनके साथ, उन्होंने काम कहा, इंग्लिश भी उस तरीके से नहीं थी लेकिन बड़ी मोहब्बत प्यार के साथ इस मुल्क को डिवेल्प किया और अपनी इज्जत कमाई, पैसा भी कमाया, सब कुछ कमाया और अपना इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी भी गुजारी, सब कुछ किया। आज ये दिन दिन जो है, क्या उससे के कंपेयर आज के दिन को गर्म करें, क्या हम जो है क्या इस्लामी लिहाज से अमली मुसलमान अपना किरदार के लिहाज से क्या हम उसी डायरेक्शन पर चल रहे हैं या हमारी भी कुछ कोताहियाँ हैं और फ्यूचर के अंदर जो है क्या हमने इसी डगर पर चलना है, अपने आप को भी ठीक करना है या दूसरों को भी मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते रहेंगे? अगर हमें अमली तौर पर जो है इस्लाम के मुताबिक भी जिंदगी हमने गुजारनी है और मुसलमान ने गुजारनी पड़ेगी, गुजारनी भी है, तो हमें अपने आप को भी दुरुस्त करना चाहिए ताकि हमें ये मसाइल भाई, इस बारे में आप क्या फरमाएंगे?
1: जी जी बिल्कुल, मैं पहले आता हूँ जो मैसेज आपने पढ़कर सुनाया था उसके हवाले से कि पुलिस को अगर कबल अज़ वक्त इतला नहीं थी तो क्या। ये देखें, ये बातें जितने भी ऐसे सवालात हैं ना जो लोगों के जहन में आ रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, निजी मुलाकातों में, दुकानों पर जाकर, रेस्टोरेंट में बैठे हुए, टैक्सी में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं, पुलिस के इल्म में ये सवालात लाए जा रहे हैं,
0: लाए जा रहे हैं।
1: पहली तो बात यह ना, जैसे मैंने भी पहले कहा था कि अगर उन्होंने, यहाँ का कानून है कि पुलिस से इजाज़त लेनी पड़ती है किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन की, अगर वो डेमोन्स्ट्रेशन की इन्होंने इजाज़त नहीं ली थी तो पुलिस वालों ने उनसे उन्हें क्यों वहाँ डेमोन्स्ट्रेट करने दिया गया, करने दिया? तो ये सवालात पुलिस के सामने रखे गए हैं और उसके जवाब भी दे रहे हैं। अब मैं उतनी तफसील में तो नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे भी जाने का वक्त हो गया है करीब और आपकी ब्रेक का भी वक्त हो गया है।
0: जाने से पहले एक और मुख्तसर सवाल मैं करूंगा, लेकिन
1: पहले मैं अगर ये कह दूं कि मुख्तसरन ये है कि हमारी कम्युनिटी को यह एतमाद रखना करना चाहिए कि जो कम्युनिटी में मुतर्रक किरदार अदा कर रहे हैं, हर बंदा, हर बंदे के पास वक्त नहीं होता है कि वो एक लीडर बने, वो समाजी लीडर हो, सियासी लीडर हो, कोई भी वो ये किरदार अदा करते, जो लोग करते हैं अपना वक्त निकाल कर ये कम्युनिटी के लिए करते हैं, खुदा रहा उन पर एतमाद कीजिएगा, उन्हें गाइड कीजिएगा और वो अगर कोई बात कहते हैं तो उनको तस्लीम कीजिएगा कि वाकई, मिसाल के तौर पर अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं मीटिंग से उठ कर आया हूँ तो अगर आप इस पर बहस करना शुरू कर दें कि कौन सी मीटिंग जी, आप कौन है मीटिंग, कौन आपको बुलाएगा, ये वो, तो ये मेरे ख्याल में उसकी बजाय अगर कह लें बड़ी अच्छी बात है जी आपने वहाँ क्या कोई बात हुई, अगर ये मुझसे पूछे तो ये ज़्यादा बेहतर है। सो अपने रहनुमाओं पर एतमाद कीजिएगा और ये जो सवालात लोगों के जहन में हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं तकरीबन 3-4 मीटिंग में, फ़िलहाल इस मौजू पर होने वाली 3-4 मीटिंग में जा चुका हूँ और ये सवाल हैं जो वहाँ उठाए गए हैं।
0: अच्छा मुख्तसर, तो मैं चूंकि टाइम ब्रेक का भी पहुँचेगा, आप भी जाएंगे, मैं इससे पहले कुछ आप फरमाएं, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि 3-4 मीटिंग्स हम आपने जिक्र किया है, मजमूई तौर पर, इनफरादी तौर पर तो हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे रहनुमा, इसमें कोई शक नहीं, उलमाए दीन से बड़ा कोई रहनुमा नहीं है, मजमूई तौर पर आप क्या समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी के अंदर रहनुमाई का फुकदान है?
1: बिल्कुल फुकदान है, पहले नहीं होता था और फुकदान है वो लीडरशिप हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन किसी न किसी सूरत वो मौजूद लीडरशिप अब भी मौजूद है। वो नहीं जिसे हम और आप जानते हैं, जैसे बड़े बड़े नाम होते थे, डॉक्टर चौधरी बलायत साहब हैं, राजा कुर्बान साहब हैं, हाजी नज़ीर साहब हैं, लेकिन ये बड़े बड़े नाम हैं ये जो हमारी कम्युनिटी में इन्होंने बहुत ही मुतर्रक किरदार अदा किया। हमारे उनसे इख्तलाफात हो सकते हैं,
0: ठीक है,
1: जिस तरीके से उनके काम
0: 40 सेकंड रहते हैं जी,
1: लेकिन अब भी वो चीज़ नहीं है कि वो डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हुई, लेकिन लीडरशिप बहरहाल मौजूद है, उसकी वो सिटी वाइड नहीं है, मुमकिन है एरिया वाइज हो,
0: एरिया वाइज हो। यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे। शफकत मिर्ज़ा साहब, मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
1: एक बात अगर जाने से पहले अगर मैं मुख्तसरन कहा था, वो ये था कि जिस वाक्य जिस तरह वो बात कर रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त है कि
0: सेकंड रहते हैं जी
1: जी। अच्छा, जो जिस दौर का वो जिक्र कर रहे हैं ना, 60s 70s का, वो दौर था,
0: सुनहरी दौर था,
1: काम में मसरूफ था, ना अंग्रेजों के पास टाइम था सोचने का, ना हमारे पास टाइम था, और अब वक्त है
0: ना, सोशल मीडिया थी,
1: बिल्कुल सोशल मीडिया भी आ गया,
0: बहुत शुक्रिया
1: भी नहीं है, तो
0: हमको
1: ये मौका मिलता है।
0: मिर्ज़ा साहब का दिल किया था, अगर उससे शुक्रिया अदा करते हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: By downloading the Link FM app. Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
8: Are you looking for the perfect venue for your special day? Then come to VIP Mansion, with seating for up to 550 guests and situated in Sheffield, just 3 minutes from the M1. From dry hire to all-inclusive packages, we offer it all. For any inquiries, call us on 07 809 568 233, or follow us on Instagram at VIP Mansion Weddings.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham, is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: Do you ever find yourself lonely or isolated? Or there are issues at home like finance or housing related? Perhaps you have something on your mind and would like to get it off your chest. Whatever it is, your Epic Link worker, Tamina Mia, would like to offer you this space to talk at the PMC every Wednesday from 11 a.m. till 2 p.m. This is a social space for you and other ladies to unwind and engage in various activities. Refreshments are available. Let your Epic Link worker encourage you to build meaningful connections with your community. So what are you ladies waiting for? Let's connect. It'll be epic. For more information, contact Dr. Rob on 074 439 54378. That's 074 439 54378.
11: Our voice, our choice, our radio station, Sheffield's Link FM.
12: Link FM.
11: 96.7 Link FM.
12: Link FM.

लिंक एफएम के तमाम प्रोग्रामों में की जाने वाली गुफ्तगू, प्रोग्राम को पेश करने वाले मेजबान और प्रोग्राम में शामिल मेहमानों की अपनी जाती राय होती है। उनकी गुफ्तगू से लिंक एफएम का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं।

0: आराम से बैठिए, यादों में खो जाइए और लुत्फ उठाइए खूबसूरत गीतों और दिलनशीन गजलों का। लिंक एफएम के साथ
1: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.

0: दो घंटे की मौसीकी, दो घंटे यादों के, दो घंटे गीत और गजल, सिर्फ लिंक एफएम पर।
1: लिंक एफएम, योर नंबर वन कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं। हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें। बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है। राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड। आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब।
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: You can listen to Link FM on 96.7 FM across South Yorkshire, online and on DAB.
18: हमें तुमसे कितना प्यार है पारो, ये तो हम नहीं जानते।
19: मगर जी नहीं सकते।

हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishfaq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.